0: सुहानी में। हर नई सुबह हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी का हर दिन एक नया मौका है मुस्कुराने का, सीखने का और आगे बढ़ते जाने का। और आगे वही बढ़ता है जो सकारात्मक सोच लेकर जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि मुश्किलात हर शख्स के जीवन में बार बार आती हैं, लेकिन वही कामयाब होता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है जो बस चलना जानता है, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, अपनों का साथ देते हुए, अपनों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए। अगर दिल में उम्मीद हो और होंठों पर मुस्कान हो तो मुश्किलें आसान हो जाती है और रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। बीती हुई बातों को रुखसत कीजिए, पीछे छोड़िए और आज की सुबह का इस्तकबाल पूरे हौसले और यकीन के साथ कीजिए, क्योंकि जो इंसान जिंदगी का गीत गुनगुनाता है उसे गुनगुनाना नहीं छोड़ता, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, गाते हुए गुनगुनाते हुए उसकी राह में खुशियाँ खुद ब खुद दस्तक देने लगती हैं। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर प्रोफेसर प्यारे लाल फिल्म से किशोर कुमार साहब और मनहर उदास।
1: आकाशवाणी राउरकेला समय वर्तमान स्टूडियो घड़ी सकाळ 5:40।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिक

0: वित्तीय परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25 हजार रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12 से 15 हजार रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी राउरकेला समय वर्तमान स्टूडियो घड़ी रे सकाळ 6:05 आसंतु सुनिबा भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना सुनिबा नमिता अग्रवाल कंठरू भक्ति गीतटी गीत रचना करिसंती गुरुकृष्ण गोस्वामी।

चित्रकूट में राजा जनक ने अपने रनिवास समेत गुरु वशिष्ठ, मुनिवर विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के उपदेश सुनते हुए कुछ दिन व्यतीत किए। फिर उनकी रानी सुनैना एक दिन श्री राम की माता कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा के शिविर में पहुंची। वैधव्य भोगती इन रानियों से मिलन का ये अवसर शोकपूर्ण होना स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का 14 वर्षों के वनवास का प्रसंग भी कम शोकपूर्ण नहीं था। किंतु महारानी कौशल्या ने जो कुछ भी हो चुका था उसे विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लिया था। उनका ये विश्वास भी दृढ़ हो गया था कि श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का वनगमन सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। उन्हें चिंता थी तो भरत की, जो कुल दीपक थे और जिनके शील, नम्रता, भ्रातृप्रेम, भक्ति आदि की प्रशंसा करने में सरस्वती की बुद्धि भी जैसे सक्षम नहीं थी।

एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा अथ वार्ताः केंद्रीय मंत्रिमंडलेन भारतस्य सेमीकंडक्टर इति परिकल्पना निर्माण परिवेशस्य सुदृढ़ीकरणाय पंचशताधिक सप्तविंशति सहस्राधिकैक लक्ष कोटि रूप्यकाणां विनियोगेन सेमीकॉन 2.0 इत्येषा योजना अनुमोदिता। नवदिल्ल्यां ह्यः वार्ताहरान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव एतान् मंत्रिमंडल निर्णयान् उद्घोषितवान्। असौ अवदत् यत् सेमीकॉन 1.0 इति योजनायाः सफलताम् अनुवर्तमाना एषा योजना भारतं वैश्विकं सेमीकंडक्टर इति केन्द्रं स्थापयितुं प्रशासनस्य दृढ़ प्रतिबद्धतां द्योतयति। मंत्रिमंडलेन पंचशताधिक द्विषष्टि सहस्र कोटि रूप्यकाणां विनियोगेन चलदूरभाष विनिर्माण योजना अपि अनुमोदिता। एवमेव उत्तर प्रदेशस्य वाराणसी नगरे मार्ग संयोजनस्य सुदृढ़ीकरणाय यातायातावरोधस्य न्यूनीकरणाय यात्रा समयस्य च संक्षेपणाय द्वे उन्नत मार्ग परियोजने अपि अनुमोदिते। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर विश्वासम् व्यक्तवान् यत् भारत यूरोपीय संघयोः व्यापार प्रौद्योगिकी परिषदः उपवेशनेन द्वयोः पक्षयोः सहकार्यम् अधिकं सुदृढं भविष्यति। ब्रुसेल्स नगरे सम्पन्नस्य तृतीय भारत यूरोप संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषदः उपवेशनस्य अनन्तरं वार्ताहरान् संबोधयन् असौ अवदत् यत् भारत यूरोपीय संघयोः मध्ये मुक्त व्यापार

0: पार संधि सुरक्षा रक्षा सहकार अथ गमनागमन रूप रेखा इत्येतेषां माध्यमेन विकसितः सहयोगः अग्रे अपि प्रवर्धिष्यते.
1: As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains.
0: केंद्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत यूरोपीय संघयो मुक्त व्यापार संधि निष्पक्षम न्यायसंगतम संतुलितं च निरूप्य अवदत् यत् एषः संधिः उभय देशयो सर्वेषां क्षेत्राणां कृते परस्पर हितकरः भविष्यति. भारतीय निर्वाचन आयोगेन पंजाब कर्नाटक तेलंगाना दिल्ली इत्येतेषु नगरेषु प्रचलितस्य मतदात्री सूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमस्य समय सीमा विस्तारितास्ति. दिल्ली कर्नाटकयोः मतदान केन्द्र स्तरीयाधिकारिभिः प्रतिगृहं गत्वा क्रियमाणं सत्यापन कार्यं यत् अस्य मासस्य नवविंशति दिनांक पर्यन्तं निर्धारितम् आसीत् अधुना आगामी मासस्य अष्टम दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते. पंजाब तेलंगाना इत्येतयोः तु प्रतिगृहं गत्वा सत्यापन कार्यं आगामी मासस्य तृतीय दिनांक पर्यन्तं एव अनुवर्तिष्यते. विश्वविख्याता पुरी रथयात्रा अद्य ओडिशा राज्यस्य पुरी नगरे भगवतः जगन्नाथस्य तस्य ज्येष्ठ भ्रातुः बलभद्रस्य अनुजायाश्च देव्याः सुभद्रायाः सह आरभ्यते. अस्याम् वार्षिक रथयात्रायाम् जगन्नाथः भगवान् स्वभ्रात्रा भगिन्या च सह रथेषु समारोह्य भक्तेभ्यः दर्शनं दास्यति. फीफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धायाः द्वितीय उपांत्य चक्रे अर्जेंटीना दलम् अमेरिका देशस्य अटलांटा क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रवेशम अकरोत्. जुलाई मासस्य 29 दिनांके निर्णायक चक्रे अर्जेंटीना दलम् स्पेन दलम् सम्मुखी करिष्यति. भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये त्रिदिवसीय एकदिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स क्रीडांगणे भविष्यति इति वार्ताः.
2: आकाशवाणी राउरकेला समय वर्तमान स्टूडियो घड़ी सकाळ 7:00 तबे आसंतु श्रोता बंधु सुनिनेबा आजर अधिवेशन रे प्रचार हेबाकु थिबा कार्यक्रम रो संक्षिप्त सूचना. सकाळ 7:25 रे प्रचार करिबो पवित्र रथयात्रा उपलक्षे ओडिया भक्ति गीतर कार्यक्रम. परे परे सकाळ 7:30 रे सुनिबा पुरी रे अनुष्ठित हेउथबा प्रभु श्री जगन्नाथंक पवित्र रथयात्रार सीधा प्रसारण आकाशवाणी कटक केन्द्ररु. संध्या 7:30 रे प्रचार करिबो कृषक भाईबंधुंक उपलक्षे कार्यक्रम किसान बाणी. आजर विषय रहिछि खरीफ धान फसल परिचालना. एनी आलोचना करिछन्ति डॉक्टर मनोज कुमार जेना सीनियर साइंटिस्ट सोयल केपीके किरी सुंदरगढ़. कार्यक्रम प्रयोजना करिछन्ति बसंत कुमार स्वाई. राति 8:00 प्रचार करिबो प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग. क्रमरे शुणा 1329 भाग. राति 8:30 प्रचार करिबो हिंदी कथाचित्र गीत कार्यक्रम सिने संगीत. राति 10:00 शुणा गीतनाट्य श्री कुंडीचा. रचना और प्रयोजना शारदा प्रसन्न नायक. संगीत भुवनेश्वर मिश्र. कार्यक्रम शुणा आकाशवाणी कटक केन्द्रु. श्रोताबंधु ये आज अधिवेशन में प्रचार होगा कार्यक्रम संक्षिप्त सूचना. आकाशवाणी राउरकेला समय वर्तमान स्टूडियो घड़ी सकाळ 7:02 परवर्ती कार्यक्रम 7:05 आंचलिक संवाद एवं 7:15 ओडिया रे संवाद शुणा आकाशवाणी कटक केन्द्रु. परवर्ती कार्यक्रम आकाशवाणी कटक केन्द्रु.

जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सर्व पाप हर मुख्य दायक ए पुण्यमय श्रीक्षेत्र अनुष्ठित होता ए पतित पावन रथ

0: जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ,
1: जय जगन्नाथ। धन्यवाद कल्याणी, सुंदर भाव उपस्थापन करुले आज परम पावन श्रीक्षेत्र पवित्र घोषयात्रार मुहूर्त को नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्य जगन्नाथाय ते नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। आज पवित्र आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि पुष्या नक्षत्र संयुक्त हो आज समग्र विश्ववासी को आज पुलकित करुची, आकर्षित करुची। समग्र विश्व सत जमती पुरी श्रीक्षेत्र भितर ठुलीभूत रुंडीभूत होती। आज बड़दाण्ड सुसज्जित तीन रथ विजय खड़े सिंहद्वार सम्मुखें दंडायमान होती। आज सते जमती रथपथ एकाकार हो जाइए। आमे वर्तमान द्वितीय केन्द्र श्रीमंदिर कार्यालय रही चुमको दृष्टि गोचर हो प्रभु जो वृष्टि करौथले इंद्रदेवता कही जो मूसलधार वृष्टि होता जहाँ आमर एक नंबर बूथ रु कहते शांतनु बाबू ताही सत्य। कारण भगवान कर ये गोटे परीक्षा, कारण सी परा ये मर्त्य वैकुंठर जीवंत ठाकुर, कथा कुआ ठाकुर, से पर कथा कहती जदि आम भाव डोरी रे आमे तांकु जदि सही भाव रे तांकु आमे अनुभव करिबा, विश्वास करिबा, जानी पारिबा जे ठाकुर कली युगरे केते महान।
2: सुनुथिली शंखक्षेत्र पुरीठारे अनुष्ठित महाप्रभु श्रीजगन्नाथक विश्व प्रसिद्ध पवित्र घोष यात्रार सीधा प्रसारण। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଧାରାବିବରଣୀର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଶୁଣିପାରିବେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ପରେ ପରେ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
3: कैच द रेन, बारिश के पानी एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया, फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
6: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
5: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें चार बड़े सुधार किए हैं।
7: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
8: एक प्रकार से PM जय अब

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
2: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदी घोष, ताड़ध्वज और देवी दलन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रैंड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास।

0: आकाशवाणी समाचार।
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
2: बज रहा है रथ प्रभु का।
3: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि संपन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
4: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा आईआईटी के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
5: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत। सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी।

धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर कल्याणी नंदी महोदय। वर्तमान रथ प्रतिष्ठा समय रथ होम सरला परे पवित्र जल एवं रथर प्रतिष्ठा पाई जहाँ जहाँ उपकरण उपचार दरकार ताकु धरी मंदिर पुरोहित वर्ग से माने वर्तमान रथ पाखक आसुचंती। वर्तमान बड़ ठाकुर बलभद्रंक रथ उपरक जिबे तापर पर्यायक्रमे तीन रथर प्रतिष्ठा करिवे। एवं ए जो रथ प्रतिष्ठा ए रथर प्रतिष्ठा काहेकि करा जाय आपण एटा भी जानिबा दरकार जे आम शरीर रे जेमिति प्राण रहिले ए शरीर चलमान हब ए रथ मध्य चलिबा पाए रथर प्राण दरकार एवं सेइति पाए प्राण प्रतिष्ठा करा जाय। तेणु प्राण प्रतिष्ठा करिबा पाए ए रथ को जेतेबेले सक्रिय करा दिबो जेतेबेले प्रतिष्ठा हे जिवे रथ एवं ए प्रतिष्ठा पछरे बहुत कथा अछि जे जो सबु अपशक्ति माने थिबे से माने अपसरी जिबे जो माने भूतगण थिबे से माने अपसरी जिबे एवं जेते अपशकुन सबु थिबो से सबु अपसारित हबो ए सबु गुडाक गोटे कार्य द्वारा हुए सेटा होचे रथ प्रतिष्ठा। रथ प्रतिष्ठा होम सरिला मंगल जल से माने धरिकिरि आसिले पुरोहित माने वर्तमान रथ प्रतिष्ठा करिबा पई से माने सबु परिक्रमा करचंती। वर्तमान नंदी घोष रथ उपरकु पुरोहित माने प्रथमे जाउचंती किछि पुरोहित वर्तमान एठी तीन रथरे विभक्त हो गले एवं से माने आंब डाळरे पवित्र जल को पानी छिंचिबे पानी छिंचिला फळरे रथ गुडीको पवित्र हब। हाँ से जो सिंहासन मध्य अछि से सिंहासन उपरे पवित्र जल पकेबे एवं सेठ प्रतिमा रखिले प्रतिमा रखिले से प्राणवंत हला बोले धरा पड़े। तेणु रथ प्राणवंत ना रथटा को मध्य तो गोटे जीवंत विग्रह भाव धारण करा जाए ना। आपण जानतु गोटे कथा श्रोता बंधु जे यही रथजात्रा जो होची रथजात्रा रे रथ एवं आमर शरीर ये दुटा जाक एका कथा। वर्तमान आंब डाळरे वर्तमान पुरोहित माने रथर चारिपटे वर्तमान पवित्र जल को निक्षेप करिकिरी ब्राह्मण सेवक माने एमाने सबु रथ को पवित्रित करुचंदे एवं रथ को प्रतिष्ठा करुचंदे एवं एई रथ प्रतिष्ठा हबा द्वारा मु जहा कहुतली आपनकु रथ पवित्र हुए एवं रथ प्राणवंत होंती एवं रथ चालन करिबा पई जहा सबु शक्ति दरकार से शक्ति सबु आरोपित होंती रथ उपरे। तेणु एटा गोटे वर्तमान समय आपण देखंतु 9टा बाजिबाक 10 मिनिट अछि ए रथ प्रतिष्ठा काम सरिलाणी। तेणु 9:30 रु पहंडी थिला 9:30 रु पहंडी माने पाखापाखि 40 मिनिट ए रथ प्रतिष्ठा सरीगला परे वर्तमान द्वितीय कार्य होउछि पहंडी। तेणु पहंडी पाई मध्य प्रस्तुति हेइजिबो बोली आमर धारणा मुता आपण मानकु सूचना दउथिले जे किछि समय आगरु घंटुआ सेवक माने मंदिर भितर को प्रवेश कले या भितर रथ प्रतिष्ठा सरीगला रथ प्रतिष्ठा सरीगला परे पहंडी विजय मध्य आरंभ होइजिबार जथेष्ट संभावना रहुछि। एवं आमे आपण को जो नीतिकांति विषय कहूँ ये नीतिकांति जानापी सिंहद्वार दक्षिण भाग में गोटे डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड मंदिर प्रशासन पक्षर कराई से डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड जोटा अच्छी से कौ नीति बर्तमान मंदिर चलती कारण आम तो मंदिर भितर को जापरि एवं बड़दाण्डर जो मैंने अच्छा से मैंने तो जापरवे वर्तमान से डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड गोपाल बल्लभ सका धूप यहाँ शेष हो गला वर्तमान आमको सूचना मिलू। तेणु गोपाल बल्लभ आ सका धूप यहाँ शेष हो गला महाप्रभु प्रस्तुत होहंडीपाई तेणु पहंडीपाई आम समस्त प्रतीक्षा रोटे कथा जे आप जानतु जे महाप्रभुंकर रथजात्रा को लेकर एवं निकट अतीतर गोटे बद सृष्टि आपत जानते से बिवाद संपर्क में आम आलोचना करवा ना कारण से राज्य सरकार केन्द्र सरकार मंदिर प्रशासन ये समस्त दायित्व अच्छी किंतु गोटे सबुठ बड़ कथा हो महाप्रभुंकर जहाँ विधि विधान नीति कांति रीति नीति ये समस्त अच्छी ये सबुगुड़िकर आधार हूँ शास्त्र बिना शास्त्रीय आधार में महाप्रभुंकर किछि हुए ना तेणु से शास्त्र को जदि अस्वीकार करवा ताले महाप्रभुंकर जगन्नाथ संस्कृति एवं महाप्रभुंकर महिमा मध्य विखंडित हो। तेणु से अनेक प्रश्न करुचे अन्य स्थान रे जे अन्य स्थान रे भिन्न समय रे रथयात्रा हेले असुविधा कौन असुविधा होचे या जे शास्त्रीय विधान जेतोले नष्ट होबा सेतोले कोनो से श्रृंखला रहइबो नै एवं सबु विश्रृंखलित होइजिवो। तेणु से महाप्रभु जेहेतु गोटे चरम श्रृंखला

जो कर्म करने जीवर जीव ए मृत्यु रे जन्म नहीं से केवल कर्म ही कर से कर्म हो सत्कर्म उचित कर्म जो कर्मर फल मनीष लाभ कर तेणु आम जो आलोचना प्रसंग में कहते जे मनीष कोटि कोटि टंका रोजगार कले मला बेलू टाटे नहीं जापर ना तार कारण हूँ केवल तुम कर्म कर कर्मर फल भगवान जगन्नाथ छाड़ी पड़ो जहाँ गीतार कहला कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फलेश कदाचन धीरे धीरे आम जो बसीचु श्रीमंदिर कार्यालय तार बाँ पटे बर्तमान जो बड़दाण्ड रही बड़दाण्ड लोकारण्य एवं वर्षा सत्वे छता धरिकी समस्ते आसी कारण महाप्रभु जगन्नाथ प्रति जो श्रद्धा भक्ति विश्वास कारण मूलटी अटई विश्वास कही जगन्नाथ दास भगवान को पाइबा कोले भीतर विश्वास रखा पड़ो विश्वास न रखिले किसी पाई ना कलीजुगर प्रत्येक मनीष भितर आज राजूति करुच्ची अविश्वास अंधविश्वास तेणु अविश्वास अंधविश्वास भितर भगवान मिले ना भगवान को पाइबा कोले भक्त टी हो पड़ो भाव भक्तिर डोरी रे भक्त टी आमे भगवान को प्रार्थना कले दुई हाथ टेकी प्रार्थना कले भगवान आमको देवे कारण सी हूँ भक्तर भगवान अभक्तर भगवान नुहंती जे अविश्वास सन्देह भितर भगवान को डाके से केवे गुरुत्व दिए ना तेणु वर्तमान पाग अनुकूल धीरे धीरे आकाश मेघमुक्त होबार लगी धीरे धीरे श्रद्धा भक्त मानकर माने सुअ छुटबार लगी आम बाँ पटे आम देखु राज नर को लगिकी जो बारिकेड भाया कर पुलिस बाहन जगिक रही आम देखु बर्तमान भिड़ धीरे धीरे बढ़वार लगी ये सब प्रभुंर लीला भगवान लीला कारण आम भावुले जे सका जो प्रकार पाग हो कौन नहीं कौन हो देखु गोटे मुहूर्त भितर सब बदली जाऊँगी समय बड़ बलवान यही समय क्या केतबले कौटि नहीं रखिब कौ जगार पहुँचेब कही कही पारे ना आज्ञा ये समय को नियंत्रण करुंटी दुईटी देवता जड़े हेले जगतर नाथ जगन्नाथ आउ जड़े हेले लोकनाथ जे लोकंर नाथ जे भगवान जगन्नाथंर श्रीमंदिर रत्नभंडार जे जगुआ रत्नभंडार को जे जगिक रही सी हूँ लोकनाथ सी हूँ लोकंर नाथ ये हूँ जगतर नाथ जहाँ पाखे जाति बड़ नुहे जगत बड़ से होती जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु तेणु सब भक्त आकुल प्रार्थना करुच्ची प्रभु मु तुमको किसी मगुना धन मगुना जन मगुना मगुची श्रद्धा बालीर हाते श्रद्धार बाली विश्वास बाली जो श्रद्धा एवं विश्वास आप देखिए जो ओलट शुआ जो रथरे आरूढ़ सी मध्य जीव परम एवं श्रद्धा विश्वास तेणु जीव परम सांगे मिलन हाँपी मिलित हाँपाई यात्रा को आसुची यात्रा हूँ पतित पावन जात्रा महामिलनर जात्रा आज एक पवित्र दिन रे भक्त कहीं केत दूर धाई आसे सब गोटे लक्ष्य गोटे उद्देश्य जे महाप्रभु को दर्शन कर चर्म चक्षु दर्शन करी से मुक्ति मोक्ष पाइब यही ज्ञान नहीं भक्त टे धाई आसुची केते कष्ट करी आसुची केते दूरर आसुची तार मन भितर जो भावना तार मन भितर जो चेतना जदि ता पूरण हो न थांता ताले ते दूर को कौन श्रीक्षेत्र पुरी को भक्त टे धाई आसंता कि तेणु आम विश्वास निश्चित भाव रे प्रभु तांकर दुख दूर करुचंदी तांकर भितरे तांकर मनस्कामना पूरण करुचंदी हे प्रभु हे कालिया शांत हे जगतर ठाकुर तुम्हें सब भक्तर मनस्कामना पूरण कर जेते जोटी अनीति अन्याय अधर्म होउची ताकु तुम्हें सुधारी दियो नचेत दंड पाइबे यही ज्ञान तुम्हें दियो प्रभु कारण भक्त आज कलीजुगरे जेते सबू पाप कार्य करुची ताको कहिबापई केही नाही तेणु तुम्हें जो निजे स्वयं बड़दाण्ड को आसुच जो माने तुम मंदिर भितर को जाई दर्शन करी पारु नहंती प्रभु तांकु तुम्हें दर्शन देवाई स्वयं चली आसुच आठ आउ बड़ कथा कौन हो पारे आठ आउ बड़ विचार कौन हो पारे कारण पृथ्वी रे जिते देवता आसती 84 लक्ष जीव दे जो दुर्लभ मनीष पाइचे

0: जय जगन्नाथ। जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथंकर रथयात्रा केवल एक पर्व नुहे, बरं एहा होउछि लक्ष लक्ष श्रद्धाळुंकर आस्था विश्वास और भक्तिरे भरा दस दिन व्यापी एक महासमागम। यही पवित्र रथयात्रा अवसर रे भक्त मानकर सुस्थता और सुरक्षा निश्चित करिबा आम समस्तंकर दायित्व। सेइथिपाई खाद्य निरापत्ता प्रति सचेतन होबा अत्यंत जरूरी। यही समय रे खाद्य निरीक्षक माने निजर कर्तव्य सक्रिय भाव में तुलेबा समय रे आमको मध्य केते गुड़िया दिग प्रति यथेष्ट ध्यान देवाक पड़ो। जमीक तटका खाद्य खातु एवं विशुद्ध पानी जल व्यवहार करतु। बाहर खोल में बिक्री होता खाद्य, कृत्रिम रंग दिया खाद्य, बासी और दुर्गंध होता खाद्य, मछि बसुवा खाद्य एवं पचासढ़ा फल और पनीपरिया आदौ खातु ना। खाद्य खावा पूर्वर एवं पर तथा शौच हाँपर निज हाथ को साबुन भल भाव धुंत। शरीर जल शुष्कतु रक्षा पाया आवश्यक स्थले ORS द्रवण पिंतु। सर्वदा पायखाना व्यवहार करूँ एवं परिष्कार परिच्छन रुंतु। अलिया आवर्जना तथा बड़का खाद्य एणे तेणे न पक डस्टबिन व्यवहार कर। जरूरकालीन सहायता पूरी जिला मुख्य चिकित्सालय कंट्रोल रूम फोन नंबर 06752221175 जोगाजोग करूँ एवं आंबुलांस 108 को कल करूँ। जय जगन्नाथ।
1: राष्ट्रीय प्रगतिर भीति नारी शक्ति विकसित भारत में समृद्ध ओडिशा महिला सशक्तिकरण को केन्द्र और राज्य सरकार विशेष गुरुत्व। महिला सशक्तिकरण जुगांतकारी योजना सुभद्रा महिला मिली आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एकीकृत ममता और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजन योग्य हिताधिकारी सहायता। असुविधा थिबा महिला तुरंत सहायता पाई महिला हेल्पलाइन नंबर 181। असहाय महिला शक्ति सदन वन स्टॉप सेंटर पोषण अभियान मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना इत्यादि माध्यम गर्भवती किशोरी प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य को दि जाऊ प्राधान्य। प्रारंभिक शैशव जत्न और शिक्षा आमे पढ़ा आम भाषा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अद्युका इत्यादि जरिया महिला और शिशु सर्वांगीन उन्नति पाई सर्वदा कार्यरत महिला और शिशु विकास विभाग ओडिशा सरकार।
2: जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। श्रोता बंधु, महाप्रभु पुणी आउ थे समस्त छता को फुटे आ भितर वर्षा बंद हो जाता कितु वर्तमान वर्षा टिके टिके टिके टिके पुणी पड़वा आरंभ करछु। किंतु

0: रथ को विभूषित करिवे, रथ परिपूर्ण हबो। आपण कहिले ये रथ किए? ये रथ हूँ आसनं जगतां भूप स्वयं स्वासन विग्रह। आपण चिंता करंतु जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र भगवान एमानकर ओजन केते? जेतेबेले याकर ओजन कथा संपर्क रे लेखिछंती पंचसखा को मध्यरु अन्यतम सखा बलराम दास। बलराम दास कहिले जे सात गोटी पर्वतरु अटंती से गौरु नाम बही अछंती अचल महामेरु। से पूरा अचल महामेरु, अचल महामेरु को ये जो केते खंड काठ मु देखुछ गणना अच्छी 731 खंड 742 खंड काठरे ये सब तैयारी है छि। यही काठरे तैयारी हेतिबा रथ को रथ अचल महामेरु श्री जगन्नाथ महाप्रभु को धारण करि पारिबो त? सेति पई स्कंद पुराण रे स्पष्ट भाव रे कुआ जाय छि ये जो तीन गोटी रथ देखुचंती, ये तीन गोटी रथ होची श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर तीन गोटी कलेवर। ये तीन गोटी कलेवर, ये तीन गोटी कलेवर उपरे ये तांकर आसन विग्रह। महाप्रभु रथ रूपरे आसन विग्रह रूपरे दंडायमान होइचंती, निज उपरे निजे निजे आसन होइचंती एवं से निजे बसचंती। आपण देखिबे भगवान को बुहाउचंती दुई जण, जणे एठी अछंती अरुण, अरुण अछंती अरुण स्तंभ उपरे से ठाकुर को बहन करचंती। सूर्यदेव हुंकर से बाहन, सूर्य रूपी भगवान को मध्य से बहन करचंती। एवं आउ गोटे खुंभ उपरे आउ जणे अछंती, से अछंती गरुड़। से गरुड़ किए? गरुड़ मध्य श्री जगन्नाथंकर बाहन, किंतु गरुड़ गोटे पक्षी, अरुण गोटे पक्षी, से कौन वास्तविक जगन्नाथ को बहन करिपारिबे? सेतिपाई गोपाल सहस्त्र नाम रे कहा जाइछि गरु गरुड़ो गरुड़ाग्रज, से निजे गरुड़, निजे गरुड़ अग्रज, भगवान निजे। अरे गरुड़ बोली किछि नाही, निजे महाप्रभु गरुड़ रूपरे अवतीर्ण होउछंती एवं से तांकु बहन करुछंती। गरुड़ाग्रज कहिले गरुड़ंकर अग्रज होउछंती अरुण, से मध्य भगवान, से मध्य अरुण रूपरे सूर्यंकु बहन करुछंती। तेणु जेमिति गरुड़ रूपी भगवान जगन्नाथ निहैकिरि बहन तांकु बहन करुछंती, सेमिति एई जो अरुण मध्य से जमती सूर्य को बहन करमती तीन रथ ये होती महाप्रभुंकर स्वयं स्वासन विग्रह, ये हूँ तांकर आसन विग्रह। अर्थात ये जो रथ तीनोटी देखुंट ताल ध्वज दर्प दलन नंदी घोष, ये हूँ महाप्रभुंकर तीन टा आसन विग्रह। ये आसन रूप से जगन्नाथ एठारे रथ रूपरे विराजित एवं से मध्य रथी रूपरे विराजित हेबे। आउ अल्प समय परे
1: गोटे कथा डॉक्टर नरेश चंद्र दास महोदय, मु भावुथिली आपण इंद्रंक कथा कहुथिले द्रोण पुष्कर संवर्तक आवर्तक ए चारि मेघ धरिकिरी वर्तमान इंद्र श्रीक्षेत्र रे विराजमान करुछंती। इंद्रंकर महाप्रभुंकर पड़े नाही, तेणु इंद्र जेतेले सात दिन वर्षा कले गोपरे महाप्रभु गोवर्धन टेकिक रखिले ना, तेणु इंद्र को पूजा करिवा अपेक्षा प्रकृति को पूजा करिवा पई गोपवासी ब्रजवासी मानकु महाप्रभु प्रेरणा देले। से कहले काहेकि इंद्र पूजा करुछ तमे? तमे गछपत्र को पूजा कर, पहाड़ पर्वत को पूजा कर, वृक्षलतार रक्षा कर, परिवेशर सुरक्षा कर। तेणु इंद्र टिके रागिकिरी महाप्रभु को उपरे आज गोटे सुजोग पाइकिरी वर्षा करुछंती, किंतु महाप्रभु मध्य चाहिले मुहूर्त करी ताकु चुटकिरी उड़े।

0: वातावरण महाप्रभुंकर सानिध्य संपर्क आज कोण अनुकोण रे प्रवाहित होपरि समुद्र तरंग परि तेणु श्रीक्षेत्र को समस्तंकर आगमन परे ये हेउछि महाप्रभुंकर करुणा बारी तेणु इति अवसर रे हे श्रोता बंधु आपण मानंकु प्रथम केन्द्र को आमे नै जाउछु अति निकटरु सेठारु आपण मानंकु धारा विवरणी सुनिबार सौभाग्य मिलिव। जय जगन्नाथ,
1: जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कि अपूर्व शोभा आमे देखिबा को पाउछु। समस्तंकर दृष्टि सिंहद्वार उपरे निबद्ध, कारण वर्तमान बड़ ठाकुर बलदेव से तालध्वज रथरे आरूढ़ हो गलेनी एवं देवी सुभद्रा मध्य से मध्य दर्पदलन रथरे आसीना एवं तांको सहित से ही चक्रराज सुदर्शन से मध्य से रथरे विराजमान कर सारी गोटे रथ नंदीघोष रथ। जो नंदीघोष रथर नाम अनुसार ये जात्रार नाम घोष जात्रा है, नंदी घोषरु घोष जात्रा, तेणु ये घोषर जात्रा अर्थात नंदी को छाड़ी ये घोषर जात्रा, घोष जात्रा। एवं आउ गोटे अर्थ मध्य आमे काढ़ी पारिबा वर्तमान घोष को जात्रा, घोष जात्रा, घोष अर्थात गौड़पल्ली। जो गौड़पल्ली रे गोपांगना माने अछंती से गोपांगना मानक सहित रासलीला करबा पई महाप्रभु प्रतिश्रुतिबद्ध एवं स्वयं महाप्रभु महालक्ष्मी को सांगरे नने जाउचंती से घोष को अर्थात से गौड़पल्ली को जोठी गोपांगना मानक सहित तांकर रास विहार हब। आपण माने जानंती यही जो यात्रा काल रे महाप्रभु जेतेबेले सात दिन धरी गुंडीचा मंडप रे अवस्थान करिवे, ए गुंडीचा मंडपटी होउची गोटे रासस्थली। ए रासस्थली रे तीन दिन काल अर्थात सप्तमी अष्टमी नवमी ए तीन दिन धरी महाप्रभुंकर रास उत्सव अनुष्ठित हब। सेथिपाई श्री मदन मोहन से मध्य श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर सहित जाउचंती एवं श्री मदन मोहनंकर निकटरे यही रास उत्सव अनुष्ठित हुए, गोपांगना माने अपेक्षा करि रहिचंती एवं सेथिपाई महाप्रभु सांगरे महालक्ष्मी ठाकुरानी को न नै केवल जाउचंती, कारण से स्थान रे रास उत्सव अनुष्ठित हेब। एवं आपण माने जानंती यही रास उत्सव सप्तमी अष्टमी नवमी ये तीन दिन धरी काहीं अनुष्ठित हुए ना महाप्रभु जेतेबेले जिबे गुंडीचा मंडप रे अवस्थान करिवे से समय रे यही श्रीमंदिर अधिष्ठात्री देवी माँ श्रीदेवी बा महालक्ष्मी ठाकुरानी से मध्य महाप्रभुंकर विरह को सह्य करि नपारी तांकु टिके साक्षात करिबा पई से मध्य जन्मवेदी आड़े जिबे। हेरा पंचमी दिन से मध्य जाई सेठारे पहुँचिबे, तेणु हेरा पंचमी रु से फेरिला पर दिन ही रास उत्सव अनुष्ठित हब। वर्तमान आमे देखुचु से रास विहारी महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान आज 22.5 अतिक्रम करी माड़ी आसुचंती। नीलाद्री सिंह जहाँ को कोटि कोटि जनता आज सारा विश्व रे अपेक्षा करी रहिचंती, किए टीवी परदा सम्मुखरे अछंती, को माने आमर बेतार केन्द्र बेतार जंत्र को आखि आगे रखिकी ध्यानमग्न होती आउ जो जनता एठाक आसी ये वर्षा को भ्रुक्षेप नक से माने अपेक्षा कर रही केतबले से ही चका चका आखिरे आखि को मिसई देवे से आमर एकमात्र संखाली से आमर एकमात्र धन भगवान कही आरे तो देह तो ही मुहि रही अच्छी मोह देह तो ही तु ही तो मो तो संपर्क हिसाब करे बेल तो अंटब ना तेणु तो आउ मो भितर कौन सी संपर्क कौन सी भेदभाव ना भगवान कही मुझे ईश्वर एवं मु ही तो देहरे विराजमान कर श्रीमद भगवद गीतार कही ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशर जन तिष्ठति। हे अर्जुन प्रत्येक प्राणीर हृदय देशरे मु ही से ईश्वर।

0: କାମ କର କାହିଁକି।
1: ये मुदिटी भलो लगुची पत्नी को पसंद आसीबो।
2: हां सर आपनको चॉइस बहुत भलो अछि आ ओ डिजाइन भी नुवा।
1: डिजाइन नुवा अछि ठीक अछि किंतु सुनार विशुद्धता रा प्रमाण कोठी मिलिबो।
2: सचेतन ग्राहक होवंतु आज ही डाउनलोड करंतु बीआईएस केयर ऐप। सुना किनिबा पूर्वरु बीआईएस केयर ऐप रु एचयूआईडी कोड निश्चय जांच करंतु।
3: वर्तमान राज्य रे ममता ओ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिलित भावरे कार्यकारी करूअछि।
4: एही योजना अधीन रे कन्या संतान जन्म करूथिबा महिलांकु उत्साहित करबा पई पूर्वरु दिया जाउथिबा सहायता राशि 10000 टंका परिवर्ते 12000 टंका प्रदान करबा पई सरकार घोषणा करिछंती। एही अर्थ राशि कु हिताधिकारी माने निजे ओ शिशुर स्वास्थ्य एवं पुष्टिर उन्नति निमन्ते विनियोग करिथांती। सरकारक निष्पत्ति अनुजाई वर्धित सुविधा 1 एप्रिल 2025 रु लागू करा जायछि।
3: एही योजना अधीन रे मिलुथिबा सुविधा गुडी कहेउछि कन्या संतान जन्म क्षेत्र रे हिताधिकारी माने प्रथम एवं द्वितीय गर्भधारण पई 12000 टंका पाइबे।
4: पुत्र संतान जन्म क्षेत्र रे हिताधिकारी माने प्रथम एवं द्वितीय गर्भधारण पई 10000 टंका पाइबे।
3: विशेष भाबे अनुन्नत जनजाति समुदाय संप्रदायर महिला मानंकु तृतीय एवं परवर्ती जे कोनोसी गर्भधारण पई कन्या संतान क्षेत्र रे 12000 टंका एवं पुत्र संतान जन्म क्षेत्र रे 10000 टंका प्रदान करा जिवार व्यवस्था करा जायछि।
4: एही योजना विषय रे अधिक सूचना पाइबा पई आपनक निकटस्थ अंगनवाड़ी केन्द्र रे जोगाजोग करंतु।
3: अधिक सूचना जानिबा पई महिला ओ शिशु विकास विभाग रो वेबसाइट wcd.odisha.gov.in रे लॉगिन करंतु। महिला ओ शिशु विकास विभाग द्वारा जनहित रे जारी।
5: पवित्र रथयात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि। ए वर्ष यात्रीमानक सुविधा पई ओडिसा रे विभिन्न प्रांतरु ओ पड़ोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचल रो घोषणा करा जायछि। एति सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानकरे यात्रीमानक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि। पूर्वतट रेलपथ आपनक सेवारे।
6: पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार आपनक जणाउछि असुमारी शुभेच्छा। एही शुभ अवसर रे सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मा मानक हात तयारी हस्ततंत हस्तकला सामग्री सहित मिलिट्री प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्री अपूर्व संभार। पवित्र घोष यात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार रे विभिन्न क्रय उपरे स्वतंत्र रिहाती। आसंतु आपणक अपेक्षा रे सुभद्रा शक्ति बजार एसआईआरडी कैंपस यूनिट 8 भुवनेश्वर।
7: जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। सुंदर भाव रे आपण माने सुनुथिले সেই মহাপ্রভু জগতরনাথ জগন্নাথ যে কি পরম ব্রহ্ম দারু ব্রহ্ম স্বরূপরে শ্রীমন্দিরে বিরাজমান করে দর্শন দৌঁচন্তি কিন্তু আজি যে স্বয়ং আসুচন্তি এবং অটকি গলে ঘণ্টায় পাখাপাখি সেই বাইশি পাহাচরে কারণ সে তো হটিয়া ঠাকুর নট নাগর কেতবে কাহাকু কণ কেউ প্রকার দেখিবে কাহাকু ক্ষীরিপুরে ভসাই দেবে কাহাকু কোঠি গড়াই দেবে কাহাকু দুঃখ দেবে ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା କାରଣ ସେ ପୁରା ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତର ଭାବ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା କାଳେ କିଏ କେତେବେଳେ ହାତ ଟେକିକି ଡାକିଦେବ ହେ କାଳିଆ ହେ କଳା ଶାନ୍ତ ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର ରହିଯା ତୁ ଯା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ରହିଗଲେ ସେଇଠି ଇଏ ହେଉଛି ଭାବର ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ମାୟା ବ୍ରହ୍ମ ଭୂଶକ୍ତି ବଳଦେବ ଏବଂ ସୁଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ କି ଜଗତର ନାଥ ସର୍ବଲୋକଙ୍କର ନାଥ ସେ ପୁଣି ପତିତ ପାବନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ରହିଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ତାକୁ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଷଡ଼ରିପୁ ରହିଛି ଯେଉଁ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଚେତନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଡ଼ବାଡ଼ ଗୋସାଇଁ ବଳଭଦ୍ର ଜଗଜ୍ଜନୀ କୃପାମୟୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୟୁଧ ପୁରୁଷ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ଯିଏକି କଳିଯୁଗରେ ଧର୍ମର ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ ସିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆସ ନଚେତ୍ ଏ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବ ଇଏ ରୋକଠକ୍ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର ହେଉଛି ମାନବ ଚିତ ବୁକା ବିଚାର ମଣିଷ ଭଳି ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ଖାଆନ୍ତି ପିଅନ୍ତି ଶୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷ ଭଳି ଗାଧାନ୍ତି

0: ब्रह्मनम त्वयि जाता पराधानं त्वमेव शरणं मम। जदि कौनसी व्यक्ति टे रास्ता रे जाउची ता गोड़ जदि रास्ता रे खसी गला ताले से रास्ता रे ही आर गोड़टा को देई देई करी से रक्षा पाई जाउची। तेणु जेमिति भूमि रे गोड़ खसी गले भूमि ही अवलंबन होउची से भली भाव रे प्रभु महाप्रभु जदि आपणक पाखरे कौनसी अपराध होइची से अपराध को आपण ही क्षमा करिवे त्वयि जाता पराधानं तुम ठारे जदि कौनसी अपराध हैला ताले तुमेव शरणं मम तुमे ही ताको रक्षा करिवो।
1: पवित्र रथयात्रारे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि। ए वर्ष यात्रीमानंक सुविधा पई ओडिसार विभिन्न प्रांतरु ओ पडोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जायछि। एथि सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानंकरे यात्रीमानंक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि। पूर्वतट रेलपथ आपनंक सेवारे।
2: ओडिशार प्रगति पथर जोड़ी हेउछि विकासर नुआ अध्याय। दूरता कमाई गां कु गां सह जोड़ुछि सेतु बंधन। छात्र छात्रीक प्रतिबंधक साजुनी बढ़ला नई जातायत तो हो सुगम सुगम ग्राम्य सड़क एवं दुआरे पहुंचुची आंबुलांस। गांव को बजार सह जोड़ुची प्रशस्त सड़क। चाषीर फसल ठारु कुंभारर माटी हांडी सबुपाई खोलुची नुआ सुजोग। पर्यटन स्थली को सुगम करुची सड़क संजोग। बढ़ुची पर्यटकों आगमन। गाँ गाँव में लंबी उन्नत सड़क। दृढ़ हेउची विकासर भित्तिभूमि। समृद्ध हेउची ग्रामीण ओडिशा। सड़क सेतु ओ भित्तिभूमि विकास माध्यमरे पूरण हेउछि यशस्वी प्रधानमंत्रीक पूर्वोदय संकल्प। माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीक मार्गदर्शनरे ओडिशार विकास पई प्रतिबद्ध ग्राम्य उन्नयन विभाग।
3: पुरीर बड़दाण्ड केवल गोटे रास्ता नुहे,
4: एहा भक्त ओ भगवान को जोड़ीबार पथ।
3: एही पथरे जाति नाही, धर्म नाही, परिचय नाही,
4: अछि केवल मणिष पणिया।
3: आउ जेतेबेले कहा पाई साहज्य रा हात बढे
4: ताहा ही हुए महाप्रभु का प्रति श्रेष्ठ समर्पण।
3: सड़क दुर्घटनाग्रस्तक जीवन रक्षार संकल्प सह सरकार आनिछंती पीएम राहत योजना।
4: जेउठी अनुबंधित घर डाक्तरखाने रे 7 दिन जाय 1.5 लाख टंका पर्यंत रो चिकित्सा खर्च सरकार बहन करंती।
3: ओडिसा रो 798 घर डाक्तरखाना एही योजना रे पंजीकृत होईछंती।
4: सेही भली समस्त सरकारी डाक्तरखाने रे सड़क दुर्घटनाग्रस्तक चिकित्सा संपूर्ण मागणा।
3: आसंतु मानवीयता रो एही संकल्प रे सहभागी होई आमे भी बढ़ाईबा सड़क दुर्घटनाग्रस्तक सहायता राहत।
4: पवित्र घोष यात्रा रो हार्दिक शुभेच्छा।
3: राज्य परिवहन प्राधिकरण ओडिशा द्वारा जनहित रे जारी।
0: जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज समस्ते चिंता रे पड़िले जेहेतु महाप्रभु वर्तमान गुमुट मध्य विजय करी जाइछंती एवं सेठी अटके के रही जाइछंती घंट घंटुआ माने घंट बजौछंती एवं बेले बेले सेमाने मध्य घंट को बंद कर दौंती कारण आउ घंट बजेबार भी शक्ति सामर्थ्य से मानकर नाही कारण महाप्रभु जेते एते विलंब कले किए से पटुआर रे घंट बजेब तेणु से माने बहुत चिंतार पड़िचंती। आम माने समस्ते चिंतार पड़िचु एवं समस्ते गोटे मात्र आशा करी भगवान पाखरे डाकरा दौंती कौन कालिया कान्हू आउ विलंब कर काहीकि बरस के थरे विजय रथरे पतित तारिबा पाइकि कालिया कान्हू आउ विलंब कर काहीकि कालिया कान्हू आउ विलंब कर काहीकि 14 ब्रह्मांड रुंड होइछंति दर्शन करिबा पाइकि 14 ब्रह्मांड रुंड होइछंति दर्शन करिबा पाइकि देवदासी नाच उकुट करंति दाता धीमी किटी थी कालिया कान्हू आउ विलंब कर काहीकि गुमुटरे रही गल की कालिया कान्हू आउ

0: विचार करी जो वेद दर्शन करथिले एवं वेदरे कोनसे विभेद नथिला वेदरे कोनसे संप्रदाय नथिला आपण प्रत्येक वेद मंत्र को देखंतु सेठी कोनसे संप्रदाय कोनसे संकीर्णता नाही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् ए कथा कहिला बेले आमे को संप्रदाय कथा कहुचु कि को निर्दिष्ट अंचल कथा कहुचु कि को निर्दिष्ट देशर कथा कहुचु कि ए वेदर ज्ञान रे बा वैदिक ऋषि मानक दृष्टि रे समग्र विश्व थिला तेणु से माने जहाँ उच्चारण करिसंती समग्र विश्व पै उच्चारण करिसंती समग्र मानव जाति पै उच्चारण करिसंती एटा होची सनातन तेणु एभली जो मूल्य सनातन धर्म एवं दर्शन रे एभली जो विश्व मानव पै गोटे वैश्विक चेतना गोटे विश्व चेतनार कथा कहुची से चेतनाटा को प्रवाहित कले संसार रे सुख हब एवं संसार समस्ते मिलमिशिक रही पारे आपड़ भावतु तो आम भितर केविधता अच्छी आमर भाषा भिन्न भिन्न आमर चलनी भिन्न भिन्न आमर वेशभूषा भिन्न भिन्न आम शरीर आकृति भिन्न भिन्न आमर पर्वपर्वाणी भिन्न भिन्न एत भिन्नता भितर आम केमी अच्छे हजार हजार वर्ष धरी भारत एक होकर अच्छी तार एकम्र कारण हूँ ये जो सनातन विचारधारा एवं सनातन विचारधारा भितर जो समकालीनता अच्छी जो कंटेम्पोरारी स्ट्रेंथ अच्छी जहाँ को बल कह जाए से बलटा ही भारत वर्ष को एकाठी कर रखी तेणु यही सनातन परंपरार सनातन धर्मर कम भूमिका ना से भूमिकाटा को निर्वाह करुंतर गोवर्धन पीठर शंकराचार्य महाशय जोटा आदिगुरु शंकर करते आदिशंकर करते से प्रवाह वारार प्रवाह को जारी रखिंट शंकराचार्य महाशय तेणु शंकराचार्य महाशय होती जन वेदज्ञ पंडित वैदिक गणित बहुत पारदर्शिता अच्छी निजे जन वैदिक सन्यासी तेणु वैदिक सन्यासी थवर ये वेद वेदांत षडदर्शन ये आपको प्रचार करने गोवर्धन मठ जो उद्यम करद्यम क्षेत्र में उल्लेख्य भूमिका रही तेणु वर्षा को खातिर नक परिणत बयसर अवस्था को खातिर नक से आसी आपड़ जानते शंकराचार्य जो आसती सहित छज अनुगामी आसती गोवर्धन पीठ को विधिवत भाव में मंदिर प्रशासन तरफ निमंत्रण जाए और निमंत्रण से ग्रहण कर आसिकी महाप्रभु को से दर्शन करती आ शंकराचार्य सहित श्रीमंदिर कौन संपर्क ना श्रीमंदिर गोटे हिंदू धर्मर गोटे सनातन हिंदू धर्मर पीठ होइतिबारु एठे विराजित देवता जगन्नाथ होइतिबारु एवं एठे संप्रदायर ऊर्ध्वरे उठिकी प्रभु बड़दाण्डे विराजमान करुथिबारु समग्र विश्व को एकाकार करिबा पई एवं सबु मनुष्य मानंकु स्नेह श्रद्धा अनुराग रंजित करिबा पई प्रभु ए रथयात्रा आसुथिबारु सेई विश्व प्राणर भावना नेइकरी जोटा सनातन धर्म संस्कृति अच्छी से स्वामी निश्चलानंद सरस्वती बा गोवर्धन मिठर शंकराचार्य जी भी हूँ से रथजात्रा रे महाप्रभु को दर्शन करार विधि रही आउ गोटे कथा आपण मैंने जानते जे मुक्तिमंडप बोली आमर जहाँ अच्छी पूरी श्रीमंदिर भितर जो मुक्तिमंडप पंडित सभा जोटी षोल शासन पंडित मैंने बसंती धर्म दर्शन संपर्क में जहाँ किसी निर्णय नवा कथा जहाँ किसी निष्पत्ति नवा कथा से मैंने बहुशास्त्रदर्शी बहुशास्त्र अध्ययन करते धर्म विचार क्षेत्र में कौन संकट उपस्थित हुए से तार निर्णय करती तार नायक होती तार सभापति बोली आपारती तार अध्यक्ष बोली कहीपारती तार नायक होमर गोवर्धन पीठर शंकराचार्य तेणु ए दृष्टि विचार करूँ धर्म दर्शन ये सबू क्षेत्र में केते पंडित थिले जड़े ए प्रकार एक दायित्व निर्वाह करपरपाई शंकराचार्य जो महिमा शंकराचार्य जो प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठार निदर्शन स्वरूप शंकराचार्य महोदय को निमंत्रण कराए रथारूढ़ महाप्रभु को दर्शन करने
1: पुरीर बड़दाण्ड केवल गोटे रास्ता नुहे
2: एहा भक्त ओ भगवान को जोड़ीबार पथ
1: एही पथरे जाति नाही धर्म नाही परिचय नाही
2: अछि केवल मनीष पणिया
1: आउ जते बेले कहा पाई साहाज्यर हात बढे
2: ताहा ही हुए महाप्रभु का प्रति श्रेष्ठ समर्पण
1: सड़क दुर्घटनाग्रस्त जीवन रक्षार संकल्प सह सरकार आनी पीएम राहत योजना
2: जेउठी अनुबंधित घर डाक्तरखाने रे 7 दिन जाए 1.5 लाख टंका पर्यंत रो चिकित्सा खर्च सरकार बहन करंती
1: ओडिसा रो 798 घर डाक्तरखाना एही योजना रे पंजीकृत होईछंती
2: सेही भली समस्त सरकारी डाक्तरखाने रे सड़क दुर्घटनाग्रस्त चिकित्सा संपूर्ण मागणा
1: आसंतु मानवीयता रो एही संकल्प रे सहभागी होई आमे भी बढ़ाइबा सड़क दुर्घटनाग्रस्त को सहायता हात
2: पवित्र घोष यात्रा रो हार्दिक शुभेच्छा
1: राज्य परिवहन प्राधिकरण ओडिशा द्वारा जनहित जारी।
3: ପିଲାଟା ପାଣିଆ ଝାଡ଼ା ହେଇ

0: प्रार्थना को करुछंती चारमालार ऊपर ठिया होई गजपति दिव्य सिंहदेव ऊर्ध्व बाहु होई हाथर जोड़ी समस्त नर नारायण मानंकु बरदांड रे से कोटि प्रणाम जनउछंती सांगरे समस्त सेवायत माने अछंती हरि बोल ध्वनि पकाई से महात्मा भगवती सुभद्रांक रथरु वर्तमान चारमाला आड़कु आसुछंती वर्तमान तळकु आसुछंती पूर्ण पाछोटी आनिबे जो व्यवस्था भितर जाइथिले श्रीनहररु सेई प्रकार रे से रौप्य तामजान रे बसी धोला छता कोला छता दुईटी छता देखंतु गजपति को सम्मान रे जेपरि अक्षुण्ण रहिबो से कथा को गुरुत्व दिया जाउची तेलिंगी बाजा बाजुची भजंतरी वीर काहाली बाजुची सांगरे अछंती देउल परीक्षा देउल करण लेंका करण छामु खुंटिया परीक्षा एवं राजगुरु ये समस्त पारिषद वर्ग सेवायत मानंकु धरी वर्तमान कांधुआणी होई एक तामजान रे आसुछंती श्रीनहर आड़कु ए अवकाश रे पुलकित होउछंती नर नारायण माने बड़ दांड रे थिया होइथिबा श्रद्धालु माने निजकु धन्य मने करुछंती अरे केते पाखरे आमे रथ को देखिलु केते पाखरे गजपति महाराज को देखुचु ये जो परिवेश यार विकल्प नाही एहाकु विश्व दरबार रे समस्ते भावंती कौन ए ठाकुर कि लीला करुछंती आपण माने चिंता करंतु श्री क्षेत्र ए क्षेत्र नाम होची श्री प्रथम रहिला श्री शब्द रे मां महालक्ष्मींकर कृपा को ए क्षेत्र धारण करिछि बा नामित होईछि ए क्षेत्र श्रीद श्री सह श्रीनिवास श्री निधि श्री विभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमांग लोकत्रयाश्रय यही श्री क्षेत्र श्री शब्द को नहीं एते रुद्धिमंत एते विश्व दरबार परिचित आज आमे माने जो स्थान को गले मु निजे भारतर बाहर को यूरोप महादेश से जगन्नाथ महाप्रभु पाई महाप्रभुंर पाख बा क्षेत्र जड़े मनीष बोली एत आदर पाइक आसी ये हूँ महाप्रभुंर आम मानर कृपा करुणा से सब करवा से महाप्रभु को सका उठिले नाम ने राति शोवाक गले नाम देवा बर्तमान देखु फेरी आसुंच गजपति महाराज ससम माने पाछोटी आणुंतर जो रही पारिषद वर्ग कथा को वर्तमान एवं आसतु शुणा बड़दाण्ड रु कि श्रद्धालु भक्ति श्रद्धालु मानकर भक्तिपूत अभिव्यक्ति आम केन्द्र तरफ रु संग्रह करा जाइछि तेणु आपण मानंकु आमे सही कार्यक्रम रे सम्मिलित कराउछु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
1: जय जगन्नाथ नाम शारदा विश्वाल मु भुवनेश्वर आसी आज सब बड़ कथा ठाकुर एमती मोर भाग्य जे आज दिन मोर ये नातुणी जन्मदिन मोर भी जन्मदिन तापर ठाकुर तो अनुभव बहुत किसी मो जीवन में बहुत किसी भगवान सब मोर करते चाह चाहे भी ठाकुर को मुझे सब बेले दर्शन सब बेले मो पचर से ठाकुर ठिया मो पर प्रति आशीर्वाद भी बहुत बढ़िया रखिंट आउ अनुभव ठाकुर कहिले तांकर महिमा बहुत किछि अछि
2: आज आपन को इठी केमती लागुछि जो बड़दांड रे आपन जो प्रभुंकर घोष यात्रा चर्मचक्षु रे देखु छथि आपन को केमती अनुभव
1: माने बहुत बढ़िया है जे एते वर्षा रे भी सब भक्त माने आछथि सतरे जगन्नाथंकर एतिकि महिमा एमिति अछि जोडा कि समस्त आसी पारछथि एतिकि भी कार्यक्रम को डाकुछि प्रभु समस्ते आस समस्त परिवार को पिला छुआ को समस्त घर भल भी पहुँचु आ समस्त भी जमी दर्शन पाइबे निश्चित पाइबे
3: मो ना है डॉक्टर विश्वजीत महापात्र आज्ञा ये सारा विश्वर अगणित जगन्नाथ प्रेमी श्रीक्षेत्र प्रेमी सारा भारत बर्ष जिते अच्छा सनातनी जो मान आराध्य देवता श्री जगन्नाथ आज तर नवदिन व्यापी जो घोष यात्रार प्रथम दिन किछि दिन आगु स्नान यात्रा जाइथिला नवजौवन दर्शन जाइछि गोटे दिन तले सबुदिन ठाकुर आमर भितर था श्रीमंदिर भितर था आज तर इच्छा जो कि भक्त जो कि मानने दर्शन करने को मंदिर भितर को जापार ना गहन से

0: मिलन मंच रे एई संसार रूपक बड़ दंड रे आज उभाई चंदी आज ठिया चंदी केते दिनर मनर कथा प्रभु को कहिबे हृदय कोली कहिबे हे बड़ ठाकुर बलभद्र तमे घरर मुरबी तमे कली जुगर ठाकुर तमे अमर दुख बुझ सब दुख दूर कर दियो एई भावना नै
1: 12 मास 12 मास 6 ऋतु एवं 1 वर्ष अपेक्षा करिछि भक्त कौ दिन आसिब आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि से तिथि को से तार निजर समस्त कार्य को से दूरई देछि एवं मु श्रीक्षेत्र जीवि श्रीक्षेत्र रहिबि श्रीक्षेत्र एई कार्य सब करिबि मु क्षेत्र जीवि एई क्षेत्र को आसिबा पई तार जो व्याकुलता थिला से वर्तमान से पाई तार प्राणप्रिय ठाकुर को केते कथा मनरे भाभी दौछि आउ श्रीमंदिर जो मेघनाद पाचेरी से कड़े कड़े अनेक श्रद्धालु भक्त माने ये दिव्य लीला को दर्शन करुछंती आउ बड़दांडर दुई उभय पार्श्वरे जो कोठा गुड़िक अछंती सेठारे मध्य तल ऊपर सबु स्थानरे श्रद्धालु माने आबाल वृद्ध वनिता से माने महाप्रभुंकर दिव्य लीला को दर्शन करुछंती बास्तवरे श्रोता बंधु आपण माने अनुभव करुथिबे ये साधारण जीवनर साधारण परिवारर परिवेशरु जेतेबेले वैकुंठरे आसी सेई परिवारर सदस्य जने पहुँची जाए तार जो आनंद हुए तार जो मनरे जो व्याकुलता सृष्टि हुए सेई कथा ही आज बड़दांडरे देखिबाकु मिलिछि संपूर्ण परिपूर्ण बड़दांड केवल मुंड माळ भक्त मानंकर जो प्रतिष्ठा रही आमे महाप्रभु को आग को नेबू आउ वर्तमान टिके ठीक मझी आड़ को आसुचंती बड़ ठाकुर तेणु बड़ ठाकुर पाखरे कोटि कोटि प्रार्थना हे नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय से महाप्रभु बड़वाड़ सामंतंकर से कला रंगर घोटक चारिज से माने मध्य आश्चर्य होती अरे पगल अरे भक्त माने एमती कहीं पार्श्व देवता माने से माने मध्य आनंदित होती अरे ठाकुर को देखापी एमित तुम्हें हौच आउ जे सारथी अच्छा मतली से मध्य अबाकबा हो जाती अरे भक्त मानकर कौन ये भावना समस्त भितर आउ जी असिचंती रथाधिप महाप्रभु जी बलभद्र आउ रामकृष्ण सी तो भक्त को पाई सी विहोल भाव विहोल हो जाती कर्तुम अकर्तुम अन्यथा बा कर्तुम से महाप्रभु तुम पाखरे कौन बा असंभव कौन बा असंभव सुंदर भाव
0: केड़े सुंदर भाव रे घोर घर घर नाद रे चतुर्दिक प्रकंपित करी श्रद्धालु भक्त माने चाढ़ी नौचंती प्रभु को प्रभु रथ चलुची रथ छुईवाई केते आकुलता केते व्याकुलता भक्त प्राण रे जो सम्मोहन प्रभु को देखिबू प्रभु रथ जो टाणीबू मनस्कामना पूरण करिबू एई जो भाव एई जो श्रद्धा एई जो विश्वास आज सृष्टि बड़ा
1: नजावत उमानाथ पादारविंद भजंती हलोके परे नाराणाम नतावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्व भूताधिवासम हे प्रभु जे पर्यंत तुमर चरणारविंद रे आम मन मज्जी न जाइछि लग्न न होइछि से पर्यंत आमर मुक्ति काही तेणु उमानाथ हे महारुद्र हे बलभद्र हे रुद्र स्वरूप तुम परम ब्रह्म दारु ब्रह्म तुम चरण रे आमर मति रहु आमर गति रहु आम जीवनर सबु समय रे तुम्हें आशीर्वादर मुद्रा रे आमको अभय मुद्रा रे बरद मुद्रा रे आमको रक्षा करू था हल मुसल महाप्रभुंकर सी हो।

0: शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद हरियाणा में, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर के देवबंद, दिल्ली और अन्य स्थानों पर यह अभियान चलाया गया। ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने के समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के कारण ये दुर्घटना हुई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक सातवें ओवर में बगैर कोई विकेट खोए 43 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
2: श्रोता मैंने कार्यक्रम सुनुचंते आकाशवाणी कटक केन्द्र रो सुनंतो आज प्रचारित होगा कार्यक्रम संपर्क सूचना तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानसर 80तम भाग सकल संध्या 6:00 बजे 10 मिनिट रे विकास मंत्र संध्या 6:00 बजे 30 मिनिट रे इथे आज रहिचे आकाशवाणी बरमपुर केन्द्र प्रस्तुत कार्यक्रम राति 7:00 बजे 2 मिनिट रे ओडिया कथाचित्र गीतर कार्यक्रम जिला हालचाल रे संबलपुर जिलार हालचाल राति 7:00 बजे 25 मिनिट रे कृषि संसार राति 7:00 बजे 30 मिनिट रे एथरे विषय रहिछि खरीफ धान फसल रे जैविक उपाय रे रोगपोक दमन ए संपर्क रे आलोचना करिछन्ति तापस रंजन साहू। राति 8:00 बजे 2 मिनिट रे हिंदी कथाचित्र गीतर कार्यक्रम रेडियो विवरणी सुनिबे रथयात्रा संपर्क रे राति 8:00 बजे 15 मिनिट रे राति 8:00 बजे 30 मिनिट रे ओडिसी गीत कंठशिल्पी नीलिमा पंडा राति 10:00 रे प्रचार करिबो महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पवित्र घोषयात्रा उपलक्षे श्री गीतनाट्यर श्रीगुंडीचा प्रसारण श्रीगुंडीचा रचना एवं प्रयोजना शारदा प्रसाद नायक संगीत भुवनेश्वर मिश्र एथिला आज प्रचारित होबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्क रे सूचना एथर सुनंतु आसंता काली प्रचारित होबाकु थिबा कार्यक्रम रु केतटी भक्ति गीतर विशेष कार्यक्रम बंदना सकाळ 6:00 बजे

अपने दोनों शिष्यों श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य मुनियों के साथ मुनिवर विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। ये समाचार पाकर मिथिलेश जनक अपने श्रेष्ठ आत्मियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए। मुनिवर के चरणों में शीश रखकर राजा ने आशीष पाया। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जो फुलवाड़ी देखने गए थे वहां आ पहुंचे। सुकुमार, किशोरावस्था तथा श्याम और गौर वर्ण वाले कुमारों का चित्त चुराने वाला रूप देख तथा उनके तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। श्रीराम की मधुर मनोहर मूरत देख विदेह जनक को अपनी तनमन की सुदबुद्ध न रही। उन्होंने उन दो किशोरों का परिचय पूछा जिन्हें तब तक मुनि विश्वामित्र ने बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया था। मुनिवर ने राजा जनक की जिज्ञासा शांत की। वे दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं जिन्हें ऋषि मुनियों के जप तप को निर्विघ्न करने के लिए महाराज ने उनके साथ भेजा है। दोनों भाई रूप शील और बल के परम धाम हैं। महाराज जनक दोनों राजकुमारों को देखकर जैसे आघाते नहीं,

0: वसमानः कश्चिदपि नागरिकः राष्ट्रस्य मुख्यधारातः विच्छिन्नः कदापि न अनुभवेत।
1: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और वीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि वीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: सर्वोच्च न्यायालय अद्य केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद पाठ्यक्रमांतर्गत नवम कक्षायां तृतीय भाषाया समावेशं प्रति महतीं चिंतां प्रकटितवान्। न्यायालयेन सप्रश्रयम् अवलोकितं यत् एतेन नवमश्रेण्याः कोमलमति छात्रेषु मानसिक भारः नितरां वर्धिष्यते। न्यायालयेन श्लाघनीयो परामर्शः दत्तः यत् इयं भाषा पञ्चम कक्षायां षष्ठम कक्षायां वा प्रवर्धनीया, येन छात्राः सुलभतया ताम ग्रहीतुं समर्थाः स्युः। न्यायाधीशयोः वी बीर नागरत्नायाः आर महादेवनस्य खण्डपीठेन केन्द्र प्रशासनं प्रति मौखिक रूपेण आदिष्टं यत् नवम कक्षायां तृतीय भाषायाः नवीनः भारः छात्रेषु न आरोपणीयः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair.gov/newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। ओडिशा राज्यस्य पवित्रायां पुरी नगर्याम् अद्य उत्कृष्टाध्यात्मिकोत्साहः वरीवर्ति। विश्वप्रसिद्धा भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रा अद्य धार्मिक विधि विधानैः अभूतपूर्व सुरक्षा प्रबन्धैः च सह महता आध्यात्मिकोत्साहेन समनुष्ठीयते। प्रातःकालादेव तीर्थनगर्यां निरन्तरं जायमानां वृष्टिमतीत्य लक्षाधिकाः श्रद्धालवः अविचलितश्रद्धया मुख्यमार्गे एतत् पवित्रं दृश्यं साक्षात्कर्तुम् उपस्थिताः। जय जगन्नाथ इत्याख्यैः गगनभेदी जयघोषैः सह भगवान् जगन्नाथः, भगवान् बलभद्रः, देवी सुभद्रा, भगवान् सुदर्शनश्च पूर्णविध्यनुसारं स्वस्वरथेषु विराजिताः। अनेनैव सह पारम्परिकः पहाण्डी बिजे इत्ययं कार्यक्रमः सम्पन्नः। अस्य विश्वप्रसिद्धमहोत्सवस्य सुचारु सुरक्षित संचालनाय सार्वत्रिकी सुरक्षाव्यवस्था, जनसम्मर्द प्रबन्धनं सहैव आपात्कालीन सज्जाः पूर्णरूपेण विहिताः। ओडिशा राज्यस्य पुरी नगरे अद्य भगवतः जगन्नाथस्य पावनी रथयात्रा समाचर्यते। अस्मिन् पुण्यावसरे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च देशवासिभ्यः हार्दान् शुभाशयान् प्रकटितवन्तः। देहली उच्च न्यायालयः अद्य मानव जीवनम् अत्यन्तम् अमूल्यं वर्तते इति तथ्यं सविशेषं प्रतिपाद्य सामाजिक कार्यकर्तुः सोनम वांगचुकस्य स्वास्थ्यस्य प्रतिदिनं सूक्ष्म निरीक्षणं विधातुं सम्बद्ध अधिकारिणः समादिशत्। श्री वांगचुकः सम्प्रति नवदेहल्याः जंतर मंतर प्रांगणे अनिश्चित कालं यावत् अनशने निरतो वर्तते। मुख्य न्यायाधीशस्य डीके उपाध्यायस्य अथ न्यायाधीशस्य तेजस कार्या इत्यस्य खण्डपीठाभ्याम् दृढं व्याहृतं यत् प्रशासनीय चिकित्सकैः श्री वांगचुकस्य स्वास्थ्य स्थितेः नियमित रूपेण परीक्षणं करणीयम्। केन्द्र प्रशासनस्य, देहली प्रशासनस्य च पक्षतः उपस्थापितः महाधिवक्ता तुषार मेहता न्यायपीठस्य पुरतः न्यवेदयत् यत् प्रत्येकस्य नागरिकस्य जीवनं देशाय बहुमूल्यं वर्तते, अतः वांगचुकस्य नियमित चिकित्सकीय परीक्षणे प्रशासनस्य कापि विप्रतिपत्तिः नास्ति, अपितु पूर्ण सहमतिः अस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब स्थलानां प्रवासाय निर्गमिष्यति। अत्रावसरे प्रधानमंत्री हरियाणायाः जिंद रेल स्थानके जिंद सोनीपत क्षेत्रयोः भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन संचालित रेलयानाय हरित पताकां प्रदर्शयिता। अनेनैव सह श्रीमोदी जिंद नगरस्थे एकलव्य क्रीडांगणे 7,14,000 करोड़ रूप्यकाणां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री भारतस्य कीर्तिमयी क्रीडिका पीवी सिंधुः अद्य स्वकीयं एकं सर्वोत्कृष्टं प्रदर्शनं विहितवती। चीनदेशीयां क्रीडिकां हान युए इत्येतां पराजित्य जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन प्रतियोगितायाः प्रागुपान्त्य चरणे ससंभ्रमं प्रविष्टा। भारत इंग्लैंड देशयोर्मध्ये द्वितीया एक दिवसीय स्पर्धा अद्य सांप्रतं कार्डिफ नगरे जायमाना वर्तते। इति वार्ताः।

आकाशवाणी कटक आरंभ करुचु कार्यक्रम विकास मंत्र प्रयोजना सिद्धार्थ शंकर महाराणा उपस्थापना सुकांति महांती आकाशवाणी ब्रह्मपुर केन्द्र प्रस्तुत।

0: जयंती अवसर में भुवनेश्वर स्थित राजभवन छक श्रद्धांजलि अर्पण कार्यक्रम अनुष्ठित गांधीवादी आदर्श अनुप्राणित हो से प्रजा अधिकार स्वाभिमान और न्याय आजीवन संग्राम कर ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल पार्श्ववर्ती उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में सक्रिय लघुचाप प्रभाव में पुरी समेत राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही। भुवनेश्वर पाणिपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार आसंता 24 घंटा मध्य संबलपुर देवगढ़ अनुगुल सुवर्णपुर और बौद्ध जिलार केतेक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। 25 जिले में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा होबार संभावना थिबारु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। मुख्य संवाद पुणि थरे रथजात्रे रत्नवेदी नवदिनात्मक जात्रे बाहर चतुर्धामूर्ति अगणित श्रद्धा उपस्थित श्रीगुंडीचा मंदिर अभिमुखे रथ आसंता काली 75 अमृत भारत रेल स्टेशन को लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। राज्यर 7 स्टेशन उद्घाटन राज्य में विपर्य परिचालन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने नहीं मुख्य शासन सचिव गुरुत्व एवं अति प्रबल वर्षा होगा नहीं 5 जिला को सतर्क सूचना जारी कला पाणिपाग केन्द्र। आंचलिक संवाद आज शेष होगा।
1: आजिरो प्रसंग रथयात्रा मानवपादर जयजात्रा आलेख्य आदित्य नारायण दास उपस्थापनारे मुसरिता साहू। श्रीजीवंकर 12 मासरे अनुष्ठित हुए 13 जात तन्मध्यरु महाप्रभुंकर विश्वप्रसिद्ध रथयात्रा अन्यतम। रथयात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथिरे अनुष्ठित होइथाय। काहीं क्यों आवाहमन कालरु रथयात्रा अनुष्ठित होतिबा विषय स्कंदपुराण और ब्रह्मपुराण रे विस्तृत भावे उल्लेख रही। किंबदंती अनुसार माँ सुभद्रा निजर मौसी घर को जीवापाई इच्छा प्रकट करथिबारु रथयात्रार सूत्रपात होइथला। मानवीय लीलार श्रीजगन्नाथ महाप्रभु हेउछंती प्रकट अप्रकट दारु विग्रह। आम्भेमाने जेपरी सपरिवार आनंदरे विभिन्न स्थानकु यात्रा करु लीलामय श्रीजगन्नाथ महाप्रभु मध्य सेहिपरि यात्रार आनंद नेबापाई बड़ भाई बलभद्र और भौणी सुभद्रांक सहित वर्षकु थरोटिए रत्नसिंहासन छाड़ी 9 दिन पई रथरे यात्रा करिथांती जन्मस्थान गुंडीचा घरकु। एहि यात्रारे महाप्रभु जाति धर्म वर्ण निर्विशेषरे समस्तंकु दर्शन और आशीर्वाद प्रदान करिथांती। श्रीजीवंकर एहि विश्ववंदित रथयात्राकु देखिबा पई पृथ्वीर कोण अनुकोणरु छुट्टी आसिथांती जनसाधारण साधु संत तपस्वी परिव्राजक धर्म प्रचारक एवं महापुरुष माने। पुरीर एहि दुर्लभ रथयात्राकु देखिबा पई बडदाण्डरे लक्षाधिक यात्री श्रद्धालु और भक्तमानंकर समागम होइथाय। रथ उपरे राजांकर छेरापहरा कार्य यात्रार अन्यतम केन्द्रबिंदु पालटिथाय। भारत समेत विदेशर विभिन्न स्थानरे रथयात्रा आनंद उल्लासर सहित पालन करायथाय। रथरे श्रीजीवमानंकु दर्शन कले मणिषर पुनर्जन्म हुए नाही। दारोदियंक द्वादश यात्रा मध्यरे अनुष्ठित होइथिबा एहि अनन्य रथयात्रा घोषयात्रा श्रीगुंडीचा यात्रा यज्ञवेदी यात्रा जन्मवेदी यात्रा आड़पमंडप यात्रा दक्षिणायन यात्रा दशवतार यात्रा एवं सर्वोपरि पतितपावन यात्रा नामरे बेश प्रसिद्धि लाभ करिछि। साधारण मणिषंक भळि महाप्रभु यात्रा करुथिबा बेले तांकर रथ किंतु प्रतिवर्ष नूतन भावे तयारी होइथाय। श्रीजगन्नाथंकर नंदीघोष प्रभु बलभद्रंकर तालध्वज एवं माँ सुभद्रांकर देवदलन रथकु यथाक्रमे हलदिया सबुज एवं कला रंगर कपड़ा सुसज्जित करा जाय थाए। श्रीजीवमाने रत्नसिंहासन परित्याग कला परे पहंडीरे विजय हुई तीनोटी सुसज्जित रथरे रथारूढ़ होइथांती। रथरे विभिन्न नीतिकांति समापन परे भक्त श्रद्धालु जनसाधारण श्रीजीवमानंक रथकु आनंदरे टाणी टाणी नेइथांती सरधापालीर श्रीगुंडीचा मंदिर पर्यंत। गुंडीचा घर सम्मुखरे तीनोटी रथ लागिला परे ठीक श्रीमंदिर परे नीतिकांति रथ उपरे अनुष्ठित होइथाए। श्रीमंदिरे महाप्रभुंकर पाखरे सुखिला और संकुड़ी भोग लागू होइथिबा बेले रथरे केवल सुखिला भोग अर्पण करा जाइथाए। रथ उपरु श्रीजीव धाड़ी पहंडीरे 7 दिन पई आड़प मंडप को यात्रा करिथांती। गुंडीचा मंदिर रे महाप्रभुंकर विजय हेबा परे एठारे भक्तमानंक पई आड़प अभड़ार व्यवस्था करा जाइथाए। महाप्रभुंकर ए नवदिनात्मक यात्रा पई समग्र सरदाबाली अंचल उत्सवमुखर होई उठिथाए। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବା ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ବିଶେଷ କରି ନବମୀ ତିଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଥାନ୍ତି। ହେରାପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଲୁଚି ଛପି ଆସି ଅଭିମାନିନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର କାଠକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନସିଂହାସନ ସହିତ ଭିତର ବେଢ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିରବି ଯାଇଥାଏ। ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବ ଆଉ ଭକ୍ତିର ଠାକୁର। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମୌଢ଼ମଣି ରାଜାଧିରାଜ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସକଳ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସର୍ବୋପରି ସମାଜର ସମନ୍ୱୟର ଏକ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଦେବତା। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟମୟ ଠାକୁର। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତଥା ମାନବବାଦର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ବା ଉଦ୍ଘୋଷକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରି ଯେପରି ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରି ସମ ପରିମାଣରେ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକର ଜୀବନଯାତ୍ରା ପରି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରଗତି ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ତଥା ମାନବବାଦର ଜୟଯାତ୍ରା।
0: ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ରଥଯାତ୍ରା ମାନବବାଦର ଜୟଯାତ୍ରା। ଆଲେଖ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ, ଉପସ୍ଥାପନା ସରିତା ସାହୁ। ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି
2: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣିପାରିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ।

आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुछन अतीश कुमार शतपथी जुहार। पहला मुख्य खबर, श्रीक्षेत्र पूरी न चली महाप्रभु श्रीजगन्नाथ बलभद्र आ देवी सुभद्रा विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा। रथयात्रा अवसर लुक्कु शुभेच्छा जनाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। पाताली श्रीक्षेत्र आर फटली सहित पश्चिम ओडिशार भिन भिन जगन हो रथयात्रा। ओडिशा साट अमृत भारत स्टेशन एवाकेल शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। आउ लघुचापर प्रभाव थी राज्य भिन भिन जगन लगि रही बर्षा। एथर पूरा खबर, श्रीक्षेत्र पुरीन एस महाप्रभु श्रीजगन्नाथों विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा हो। महाप्रभु श्रीजगन्नाथ बड़ भाई श्रीबलभद्र भौणी सुभद्रा आ सुदर्शन को सागे नहींकर नौ दिन लगी श्रीगुंडीचा मंदिर के घोषयात्रा थी जाऊन। ठीक समय थी महाप्रभु मान पहंडी मूल होते भी दिन अढ़े बजे तक पहंडी शेष होता। ऊपर बेला पांच बजे पहला श्रीबलभद्र तालध्वज रथ घीचा मूल होता, तार उतरु देवी सुभद्रा दर्पदलन रथ घीचा मूल होता। घंट शंख हरिबोल हुलहुली भितर भक्त मैंने दुई रथ के घिची घिचि नौछन। श्रीजगन्नाथों नंदीघोष रथ एत बल तक नुए घिचा हुए। रथ उपर बसीथार महाप्रभु मान दर्शन करवार लगी पूरी बड़दाण्ड न लाख लाख श्रद्धालुंर भीड़ जमीचे। ये बाबदे आकाशवाणी संबलपुर संवाद विभाग तरफ गोटे रिपोर्ट।

0: एमएसएमई कार्यक्रम अनुष्ठित होइजैछि। कार्यक्रमकु संबलपुर जिल्लापाल सिद्धेश्वर बल्ली रामबंदर उद्घाटन करितुवा बेले पांच दिन धरि ए कार्यक्रम चलिथिला। जिल्लार युवपीढ़ीक मध्यरे उद्योग स्थापन संपर्कित सचेतनता सृष्टि करिबा एवं स्वावलम्बी हेबा पई विभिन्न सुजोग ओ सरकारी योजना संपर्क रे सूचना प्रदान ए कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य रहितिला। एही अवसर रे युववर्गक पई एमएसएमई पीएमजीपी पीएमएफएमई आदि योजना संपर्क रे सचेतनता कार्यक्रम आयोजित होइछि। उद्योगी मानंकु आवश्यक मार्गदर्शन ओ सुजोग संपर्क रे अवगत करा जायछि। जिल्ला प्रशासन पक्षरु जातीय परिसंख्यान दिवस पालित होइ जायछि। चलित वर्षर मूल आभिमुख्य प्रशासनिक तथ्यर सामर्थ्यर उन्मोचन शीर्षक उपरे एक स्वतंत्र आलोचना चक्र अनुष्ठित होइतिला। स्थानीय जिल्ला परिषद सम्मेलनी कक्षरे जिल्ला योजना पर्यालोचना कार्यालय संबलपुर आनुकूल्यरे ए परिसंख्यान दिवस अनुष्ठित होइछि। कार्यक्रमरे मुख्य अतिथि भावे अतिरिक्त जिल्लापाल सुधांशु कुमार भई जोग दैथवा बेले सम्मानित अतिथि भावे जातीय परिसंख्यान कार्यालय संबलपुर जुग्म निर्देशक राहुल पटेल जोग दैथिले।
1: जिल्ला हालचाल आज पई इतिकि, आसंता काली जिल्ला हालचाल रे सुनिबे सुवर्णपुर जिल्ला संपर्करे।
2: आकाशवाणी राउरकेला श्रोता बंधु एवं प्रसार करुछ कार्यक्रम किसान बाणी। आज एथिरे रहिछे डॉक्टर मनोज कुमार जेना सहित आलोचना खरीफ धान फसल परिचालना। कार्यक्रम प्रयोजना बसंत कुमार स्वाई, उपस्थापन रीना दीप एवं सौभाग्य हरिपाल। किंतु ता पूर्व आसंत शुणी नवा यह सूचना और विज्ञापन।
3: श्रोता बंधु, पृथ्वी केवल आमर नुहे, आम पृथ्वीर अंश। सबुज पृथ्वी आम सुंदर भविष्य। आस लगेबा गछ, बंचेबा आम परिवेश। हार्म टू नेचर इज हार्म टू ह्यूमन फ्यूचर।
4: बदलाओ बदलाओ अभ्यास बदलाओ।
5: मशीन रे लुगा पकेबा पूर्वरु चेक करि नथिल कि?
4: बदलाओ बदलाओ अभ्यास बदलाओ। एबे निकटस्थ बैंक जाई फटा पुराना नोट बदलांतु। जदि बैंक मना करे तो आरबीआई रो ओम्बड्समैन पाखरे अभियोग करंतु। आरबीआई कहे सचेतन हुवंतु, सतर्क रहंतु।
6: प्रधानमंत्री श्रमजोगी मानधन योजना, ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड आवेदन, पैन कार्ड, फोटो प्रिंट एवं जेरॉक्स पई आज ही जोगाजोग करंतु साई डिजिटल जनसेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर। जोगाजोग ठिकाना संतोष कुमार पति, बटोली, प्लॉट नंबर 25/368, मोबाइल नंबर 9853342731। साई डिजिटल जनसेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर।
4: बदलाओ बदलाओ अभ्यास बदलाओ।
5: मशीन रे लुगा पकेबा पूर्वरु चेक करि नथिल कि?
4: बदलाओ बदलाओ अभ्यास बदलाओ। एबे निकटस्थ बैंक जाई फटा पुराना नोट बदलांतु। जदि बैंक मना करे तो आरबीआई रो ओम्बड्समैन पाखरे अभियोग करंतु। आरबीआई कहे सचेतन हुवंतु।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
0: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
0: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
0: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
2: जी।
0: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
2: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
0: यानी वाचिक परंपरा
2: जी। वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
0: श्रोताओं, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भोज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है
2: जी।
0: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: अजीत जी, भोज या भुर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था
0: जी। श्रोता, भोज पत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोज पत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोज पत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिणी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोज पत्रों पर लिखे मिलते हैं।
2: तो श्रोताओ, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
0: और हाँ श्रोताओ, भोज पत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
2: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था। लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार
0: जी।
2: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
0: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है
2: जी।
0: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
2: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी
0: जी।
2: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।

0: था
1: जी। तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कोडेक्स किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सामाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
2: जलवायु परिवर्तन।
3: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
4: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
3: जी,
4: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
3: जी, लेकिन वो कैसे?
4: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
3: जी,
4: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
3: जी,
4: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है, यानी वर्ल्ड वाइड।
3: जी,
4: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
5: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
3: जी,
5: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
3: जी डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
5: जी,
3: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
5: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
3: जी।
5: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
3: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
5: जी
4: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है
3: जी।
4: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
5: जी, जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
3: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे?
5: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर यह बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
2: अच्छा
5: जी, और इससे जो है

0: पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
1: डॉक्टर नमिता
2: जी,
1: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
2: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है,
0: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी, तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
2: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
0: जी,
2: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
1: अच्छा,
2: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
1: बहुत सुंदर उदाहरण भैया। तो आप बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है।
0: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई, और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल,
2: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
0: जी,
2: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे, और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
1: बिल्कुल,
2: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
0: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
1: जी,
0: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम।
1: जी,
0: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
1: जी, इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
2: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
1: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
0: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
2: बिल्कुल,
0: और यदि पेड़ काटे भी जाएं तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
0: जी,
2: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
1: बिल्कुल, तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
2: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
0: जी
1: बिल्कुल,
0: और दिनेश जी यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
1: जी,
0: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
0: जी,
2: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
1: ये तो बड़ी गंभीर बात है, और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
0: जी,
1: कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक, कुछ नए आयाम।
4: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: अपने अपने किताबें निकालो, चलो चलो अपने अपने पार्ट निकालो।
2: जी
1: मैं भी कह रहा हूँ, चलो शाबाश, है गोपाल इसको बोलो, मेरी तरफ देखिए, शाबाश। अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना।
2: जी जी
1: समझ गए
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं हम।

0: में होता है।
1: आदि में होता है।
2: गुरुजी, पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
0: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
2: जी
0: गोपाल
3: जी।
0: बेटा आगे तुम पढ़ाओ।
3: जी गुरुजी। पानी
1: पानी,
3: कुओं
1: कुओं,
3: नदियों
1: नदियों,
3: तालाबों
1: तालाबों
3: एवं झरनों से मिलता है,
1: एवं झरनों से मिलता है।
2: गुरुजी, झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
0: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो। चलो चलो शाबाश।
3: गंदे पानी के प्रयोग से,
1: गंदे पानी के प्रयोग से
3: अनेक बीमारियां हो जाती हैं,
1: अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
2: गुरुजी।
0: हाँ बोलो।
2: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
0: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो
3: जी,
0: चलो
3: जी,
0: ठीक से बैठो, पीछे बोलो।
4: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक?
3: जी।
5: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
6: हमारे गांव में दो कुएं हैं, एक तालाब भी है।
5: अच्छा
6: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
5: शाबाश, बिल्कुल ठीक।
2: मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
5: हाँ हाँ, ये भी ठीक है।
7: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
5: शाबाश। भाई बच्चों, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
6: मास्टर जी।
5: हाँ हाँ बोलो।
6: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
5: हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक?
3: जी मास्टर जी।
5: लिखो फिर, सब लिखो।
4: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिपेक्ष में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
8: दीदी।
9: बोलो मालती।
8: दीदी, मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
9: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
8: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
9: ठीक।
8: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
9: हाँ, फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
8: जी।
9: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
8: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
9: हाँ।
4: अब जिस शब्द पर अटको, शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की यह शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थीं। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थीं। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
10: नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी।
11: नमस्ते, नमस्ते बच्चों। नमस्ते
12: दीदी। ये
11: अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल?
7: दीदी, ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
11: अच्छा
7: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
11: सच? प्रवीण, इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
12: गुलाब।
11: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
10: दीदी मैं बताऊंगी।
11: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
12: गुलाब। गेंदा।
7: चमेली।
12: और चमेली।
11: चमेली।
12: सूरजमुखी।
11: सूरजमुखी, शाबाश।
4: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ इंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
11: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ।
4: जी।
11: मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं।
4: जी जी।
11: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
4: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
11: जी, कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है, और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
4: बहुत अच्छे।
11: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौटकर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
4: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
11: और मैंने भी तो सीखा उनसे।
4: जी।
11: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे

0: बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
1: हल्के नीले रंग के?
0: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
1: अच्छा,
0: मैं जिस इलाके की हूँ ना, वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
1: काहे की लिस्ट?
0: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं, इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
1: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
0: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना, तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
1: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है, तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: श्रोता बंधु आपण शुणुले एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आज शुणिले यार 1329 भाग। आकाशवाणी राउरकेला आरंभ करुछु सिने संगीत कार्यक्रम।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलाओ बदलाओ अभ्यास बदलाओ।
4: मशीन में लुगा पकड़ा पूर्व चेक कर
3: बदलाओ बदलाओ अभ्यास बदलाओ एबे निकटस्थ बैंक जाई फटा पुराना नोट बदलांतु। जदि बैंक मना करे तो आरबीआई रो ओम्बड्समैन पाखरे अभियोग करंतु। आरबीआई कहे सचेतन हुवंतु, सतर्क रहंतु।

हम साथ साथ हैं ए फिल्मर गीतट शुणिले गीतटी कंठदान करते हरिहरन घनश्याम बासवानी प्रतिमा राव एवं संतोष तिवारी गीत रचना रवींद्र रावल संगीत सजाई राम लक्ष्मण आकाशवाणी राउरकेला स्टूडियो घड़ी समय बर्तमान रात 8:45 होगा जाऊँगी समाचार संध्या इंग्राजी संवाद शुणा आकाशवाणी दिल्ली और ताप रही विविध भारती कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायो फोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लेटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
6: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व

0: प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
1: जगबंधु हे गोसाई।
2: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
0: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान

लीजिए सुनिए आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की, फिल्म का नाम बेमिसाल।

अभी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में सुना। संगीत तैयार किया था आरडी बर्मन ने, बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हुआ था। कैटरीना हांगकांग में जन्मी हैं और उनका परिवार दुनिया के अलग अलग देशों में रहता आया है। आखिरकार उनका परिवार लंदन में बस गया, जहां कैटरीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शुरू हुई मॉडलिंग।

एक फैशन शो में कैटरीना कैफ रैंप पर वॉक कर रही थी और उन पर नजर पड़ी फिल्मकार कैजाद गुस्ताद की, जो उन दिनों अपनी फिल्म बूम के लिए एक अभिनेत्री की तलाश में थे। बस यहां से शुरू हुआ कैटरीना कैफ का करियर। फिल्म बूम 2003 में आई थी। 2004 में कैटरीना कैफ ने एक तेलुगु फिल्म की मल्लीश्वरी, इस फिल्म ने खूब कामयाबी हासिल की और इसके बाद साल 2005 कैटरीना कैफ को मिली अपनी पहली कामयाबी। ये फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया।

Just chill. कैटरीना कैफ के लिए अभिनय का ये रास्ता बहुत आसान नहीं रहा। हिंदी से बहुत ज्यादा वाकिफ वो थी नहीं, परवरिश लंदन में हुई थी, उच्चारण में बहुत ज्यादा ब्रिटिश लहजा था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैटरीना की शुरुआती फिल्मों में उनके संवादों की डबिंग की जाती थी, लेकिन कैटरीना ने बहुत मेहनत की और अपने रोल्स में जान डाल दी।

0: तू ही करा।
1: साल 2006 में कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार के साथ पहली बार काम किया। ये फिल्म थी निर्देशक राज कंवर की फिल्म हमको दीवाना कर गए। फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन आगे चलकर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आए, जैसे साल 2007 में नमस्ते लंदन,

इसके बाद फिल्म अपनी में कैटरीना कैफ एक सपोर्टिंग रोल में नजर आईं। इस फिल्म में वो डॉक्टर बनी थी। डेविड धवन की फिल्म आई पार्टनर, जिसमें कैटरीना कैफ का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था।

साल 2009 में कैटरीना कैफ ने कबीर खान की फिल्म न्यूयॉर्क में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ थे जॉन अब्राहम और नील नितिन मुकेश।

इसके बाद कैटरीना कैफ की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म आई, राजकुमार संतोषी की अजब प्रेम की गजब कहानी। ये फिल्म उस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में से एक बन गई।

साल 2010 में एक बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म आई जिसके ना चलने का कैटरीना कैफ को भी दुख है और इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों को भी। ये फिल्म थी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की अभिनय वाली 30 मार खां। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आईं जोया अख्तर की फिल्म में। इस फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

is wrong. Let me do it, do it. साल 2012 में कैटरीना कैफ ने फिल्म अग्निपथ में काम किया और इस फिल्म में ये गाना उस साल खूब खूब

ये वो दौर था जब कैटरीना कैफ जो भी फिल्म करती वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छूती। साल 2013 कैटरीना कैफ के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस साल आमिर खान के साथ वो नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म धूम 3 में।

साल 2016 में अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर में कैटरीना कैफ ने काम किया। यहाँ आपको बता दें, ये फिल्म चार्ल्स डिकिंस के मशहूर नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर आधारित थी। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आईं सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बार बार देखो में।

अभिनेत्री कैटरीना कैफ की अभिनय यात्रा जारी है। वो नजर आईं साल 2017 में अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है में। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था जोया सिंह राठौड़। इसी साल आई वेलकम टू न्यूयॉर्क। साल 2018 में कैटरीना कैफ नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, जिसमें उनका किरदार था सुरैया का।

साल 2018 में ही आनंद रॉय की फिल्म में नजर आई वो फिल्म थी जीरो। इस फिल्म में उनके हीरो थे शाहरुख खान। 2019 में सलमान खान के साथ नजर आई कैटरीना कैफ अली अब्बास जफर की फिल्म भारत में।

0: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था अभिनेत्री कैटरीना कैफ पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आकाशवाणी राउरकेला शुणुले विविध भारती कार्यक्रम। परवर्ती कार्यक्रम आकाशवाणी कटक केन्द्र शुणा गीतिनाट्य श्री गुंडीचा, रचना और प्रयोजना शारदा प्रसन्न नायक, संगीत भुवनेश्वरी मिश्रा।

0: धैर्य धर इंद्रदुम्न घेन हे सांत्वना शोक त्याग कर मनु जाउछि मु श्रीहरिंक पासे पचारिबी तांकु एही कुटर कारण
1: जाओ हे देवर्षि तुमे न फेरिबा जाय अपेक्षा रे बसिथिबु आमे दुहे एही नीलगिरी तळे शोकातुर अश्रु नयन
0: नारायण नारायण नारायण।

वृद्ध एक प्रवेशिले विश्वकर्मा बेसरे वृद्ध एक प्रवेशिले विश्वकर्मा बेसरे कहिले कौन कहिले पंदर दिन।

0: आजि तो एडे चिंतित काहेकि जगन्नाथ
1: भाई राणी गुंडीचा राजा इंद्रदुम्नंकर शुद्ध आवेगमय आत्मीयता ओ भक्ति मोर अंतरात्मा को चहलाई देछि सेमानंकर आतुर निवेदन
0: कौन सेमानंकर निवेदन
1: सेमानंकर निवेदन आमे दुहे सुभद्रा को सांगरे धरी गुंडीचा राणीकर बेठारे थिबा मोर जन्मस्थान महावेद को थरे बुलिबा को जिबा तुमे अनुमति देले
0: ए तो अति उत्तम कथा एथिरे आपत्ति करिवार मोर कौन अछि
1: कौन खाली जिबा आसीबा ना सेठी किछि दिन रहिबा
0: तू जा स्थिर करिव
1: को दिन जिबा
0: जो दिन तू ठीक करिव
1: केउ थरे जिबा
0: तू जो थरे कहिव
1: रथरे जिबा
0: जिबा
1: तुमर तालध्वज नंदीघोष देवदलन रथ कथा मन अछि भाई
0: सब मन अछि
1: सेइ थरे जिबा तुमे तालध्वज रे जिबो मु जिबि नंदीघोष रे आउ सुभद्रा आउ सुदर्शन देवदलन रथरे जिबे आउ गोटे कथा भाई पोथी कथा
0: कौन
1: महावेदी आमर जन्मस्थान सेठी की प्रतिवर्ष थरे जाई बुली आसिले केमिति होनता बाटरे गला आइला बेले समस्त संगरे भेट मध्य होई जानता आउ माउसिंग घरु पोड़पिठा मध्य खानते
0: माउसिंग पोड़पिठा पत्र मन पड़िलानी हो तो कथा मु कोन केबे अमत हेइछे जगन्नाथ संसार मंगल पई भक्तर प्रार्थना पूर्ण करबा पई तू जेते बळे जहां चाहिबु जहां करिबु सबुथे मोर मत रहिछे
1: धन्य हेली भाई तुमे बड़ तुमको पचारिबा मोर कर्तव्य आजि एते गरगर काहिंगे लक्ष्मी
2: गरगर हेबि नै भाई भौनी तीन ही रथ बस जन्मस्थान को जीव आउ मु कहीं मु कौन तुम जगुआ की

0: श्री श्री श्री गजपति पुरुषोत्तम देवंकर जय हेउ।
1: महामंत्री, श्रीगुंडीचा यात्रा निकट ही आसिला। महाप्रभु जगन्नाथंकर कृपारु एथरक समस्त शुभ अनुकूल करी रथर निर्माण कार्य आरंभ करा जायछि। वैशाख मास शुक्ल तृतीया रोहिणी नक्षत्र दिन मु संकल्प करथिली, आउ सेय अनुसारे समस्त कार्य सुचारु रूपे संपादित हेइ उपयुक्त रथ काठ संग्रह करा हेइछि। मु अत्यंत प्रीत जे वर्धकी गण सुंदर भावरे बड़दाण्डरे रथ निर्माण करुछन्ति। एहि मनोरम यात्रारे कांची राज जेमा पद्मावतींक सहित परिणय सूत्रे आबद्ध हेइ मोर नीलाद्री बिहारींकर सेवा करिबार वासना जागृत हेइछि।
0: गजपति अनुमति देले मो कांची राजांक निकटकु विवाह प्रस्ताव देइ दूत पठेइबि।
1: पठान्तु महामंत्री, दूत शीघ्र संवाद बहन करि आणिले विवाहर आयोजन करा जिवो। जय जगन्नाथ।

दोस्तों, जिंदगी कभी भी खाली हाथ इंतजार नहीं करवाती है। हर ठहराव के पीछे एक सीख होती है, हर देरी के पीछे एक बेहतर मंजिल छिपी होती है। इसलिए अगर आज रास्ते सुनसान है ना, तो घबराइए मत, चलते रहिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कदम रोकते नहीं है, चाहे साथ कोई हो या ना हो।

दोस्तों, बहार सिर्फ मौसम में नहीं आती, बहार तो रिश्तों में भी आती है। जब हम एक दूसरे का हाथ थामकर साथ चलते हैं ना, तो एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। याद रखिए, अकेला इंसान तेज चल सकता है, लेकिन मिलकर चलने वाले लोग बहुत दूर तक पहुंचते हैं। एकता में वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी आसान बना देती है।

दोस्तों, धन दौलत, शोहरत और शरीर सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म और मीठे बोल समय की सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। ऐसा जीवन जियो कि जाने के बाद भी लोग कहें इंसान चला गया, मगर उसकी बातें आज भी दिलों में जिंदा है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल।